0: बच्चू हमारी को आज्ञा ले रहे हो।
1: तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ की माँ बाप ना रह सको।
1: हाँ
2: तो कटी तुम्हें
1: अरे सचिव वो पे बोला गया।